0: असार 13 गते शनिबारको दिन
1: बिहान 10 बजेदेखि
2: चाइना मेडिकल हल भुरी गाउँमा रेडियोलोजिस्ट डाक्टर मोनु दहित आउनुहुने हुँदा भिडियो एक्सरे गराई आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनुहोस्।
0: यही असार 13 गते शनिबारको दिन
2: दिइने सेवाहरू गर्भवती महिलाको 4-5 महिनामा गरिने एनोमली स्क्यान, पाठेघरको जाँच, लामो समयसम्म पेट दुख्ने समस्याको जाँच, पत्थरीको जाँच, पित्त थैली तथा कलेजोको जाँच, छातीमा भएको गाँठा गुठीको जाँच, थाइराइड स्क्यान, सुपरफिसियल स्क्यान लगायत भिडियो एक्सरे सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँच हुने हुँदा मौकाको फाइदा उठाउन अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क चाइना मेडिकल हल भुरीगाउँ बजार बर्दिया वाणिज्य बैंकको पश्चिम पट्टी। नाम दर्ताका लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98-442-55-909 र 98-442-97-517।
3: अशोक साल त ढुक्क नारे बत्ती
4: हा त पोर्सालिक बात सम्झोट आम्मिन्दर लक्ती रहट बरा पानी बस्तबेर अस्तिम चाम कहाँ रह सिक्जाए त सोचो त लट्ठी ठिक्कम घर डान डान पानी बर्ष टिकी मन छटपटाए लाग
3: हा त धन्न ब्यालम्ब ढिक ठिकम से सुरक्षित ठाउँ सरली नारी बत्ती
4: हा हो बदा
5: बर्खक ब्यालम्ब बहिने ठ्यार जोखिम रहत उहमा र बहिया से बचकला पहिला सावधानी अपनाए लड्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रहिए। एम्बुलेन्स सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के सम्पर्क विवरण तक सूची बनाई एकचोट्य प्रयोग के लाग झटपट झोला तयार पारी वो बर्खक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हिलकोर से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी।
6: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
7: यो हो बर्दिया को
8: सूचना समाचार अनि मनोरंजन को साथी रेडियो।

समूह बी ग्रुप बाँके के साझेदारीमा बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुइरहेको विपद पूर्व तयारी उत्थानशीलता औ सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहितके खातिर जारी सन्देश।

0: पानी अनुकूल घर बनाउथे, तर अचेल सबैतिर हावा पानी अनुकूल नभएका एकै खाले घर बन्न थालेपछि गर्मीमा तातो र जाडोमा असाध्यै चिसो हुने गरेको छ, जसले अनेकौं स्वास्थ्य समस्या निम्तने। पंखा, एसी र हिटरहरूको बढी प्रयोग गर्दा बिजुलीको खपत बढी हुन गई बिल धेरै तिर्नुपर्ने भइरहेको हुनाले आर्थिक भार बढिरहेको छ।
1: तिमीले त बडो गम्भीर कुरा पो गर्यौ बाबु।
0: हो काकी, बस्ने योग्य घरमा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, आर्थिक भार कम पर्छ र यस्तो घर बनाउन बैंकबाट सहुलियत दरमा कर्जा पनि पाइन्छ। थप जानकारी चाहिएमा आफ्नो पालिका वा पिन परियोजनाको फोन नम्बर 01-5421-760 सम्पर्क गर्नुहोस्।
2: अब बन्ने घर बस्ने योग्य घर। युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा पिन परियोजना तथा ठाकुर बाबा नगरपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: अशोक साल त ढुक्क नारे बल्ली
4: हाँ त पोस्टालिक बात सम्झोट आमिन्दर लक्टी रहट बरा पानी बस्दा बेला अस्ति चिमचाम कहाँ रह सिक्दाए त सोचो त लट्टी ठिक्कन घर डान डान पानी बर्स टिकी मन छटपटाइ लाग।
3: हाँ त धन्न ब्यालम्ब डिक्टिकम से सुरक्षित ठाउँ मस्तर रली नारी बल्ली
4: हाँ हो बदा
5: बर्खक ब्यालम्ब बहिन ध्यार जोखिम रहत उहमा र बहिया से बचकला पहिलहा सावधानी अपनाए। लद्या खोलम पानी बरल बाकल से सावधान रही। एम्बुलेंस सुरक्षा निकाय स्वयं सेवगन के संपर्क विवरण तक सूची बनाई। एक चुट्टे प्रयोग के लाग झटपट झोला तैयार पारी। वो बरखक ब्यालम संक्रमण के डर ध्यार हुलको से पानी ढिका के पी स्वच्छता में ख्याल करी।
6: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश।
7: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ बर्दियाको आवाज रेडियो टाइगर 99.2 मेगाहर्ज गर्जन सबै बाघ।

गया गया आगे भागू मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आँखें नीचे आए। हाय

डिपोर्टेड आशिक हूँ बट यू माई लव क्या जाने, लंदन से अमेरिका तक मेरे कितने दीवाने, आई कम इंडिया फॉर यू डार्लिंग, तू माने या ना माने और डी

0: ये है आपका रेडियो, रेडियो टाइगर बर्दिया की आवाज़, वॉइस ऑफ बर्दिया, वॉइस ऑफ बर्दिया।
1: चलें।

0: सबको सोन सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे, काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।